अनोनमस इंसान ने प्लेलिस्ट तैयार की है, तो फिर आज हम उनकी प्लेलिस्ट लगाएंगे, ट्राइंग आउट समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी, तो सिर्फ आज का दिन ही है, उसके बाद फिर अगले हफ्ते से फिर आपके जो गानों के रिक्वेस्ट हैं हम वो लगाना शुरू करेंगे। सो एनीवेज, आवर फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है जी, एप्लीकेशन फॉर प्राइमरी वन एडमिशन फॉर स्कूल एंट्री इन सितंबर 2027। प्राइमरी वन एडमिशन 2027 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। अगर आपका बच्चा 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले पैदा हुआ है और सितंबर 2027 में गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी वन ज्वाइन करेगा तो वो प्राइमरी वन एडमिशन 2027 में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये प्रोसेस इस साल सितंबर से शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इन्फॉर्मेशन लीफलेट 1 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेंगे। फॉर्म आप अपने बच्चे के किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से ले सकते हो, होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन ऑफिसेस या एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन से ले सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन नोट्स एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से मिल जाएंगी। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 और 25 सितंबर 2026 के बीच स्कूल आवर्स में अपने चॉइस के एक गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में सबमिट कर सकते हो। जो पेरेंट्स प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं और अपना अकाउंट आई एम स्मार्ट प्लस से लिंक किया है वो 17 से 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीजेस और POA वेबसाइट चेक कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन पर कॉल कीजिए, नंबर है 2832-7700। ऑलराइट, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड अगले अनाउंसमेंट पर। ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन। हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए, हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहें। कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना। अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो, जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो। ज्यादा जानकारी के लिए www.cancer.gov.hk/breastcancer पर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखो। ऑलराइटी, आते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। यह है Employment Services of the Labor Department। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जा करके आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीस दोनों में है। अगर आप इंग्लिश या चाइनीस नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अरेंज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, www.jobs.gov.hk/em, या आप इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। ओके, आते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है, बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहो, बाहर ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करो, आउटडोर एक्टिविटी सुबह या शाम को प्लान करो, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लें और छांव में आराम करें। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट

एक बड़ा दो दिन का जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है. जगह है बिल्डिंग, नहीं नाम है जी बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर. तारीख है 16 और 17 सितंबर 2026. जगह है मैकफर्सन स्टेडियम मॉन्गकॉक में. सुबह टाइम है जी सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक. लगभग 50 कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्री से आएंगी, वो अपनी जॉब्स डिस्प्ले करेंगी, इंट्रोड्यूस करेंगी और वहीं पर एप्लीकेशंस लेंगी. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो, ज़रूर आइए. पार्टिसिपेटिंग कंपनीज और वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट ये चेक कर सकते हैं. वेबसाइट है www.jobs.gov.hk. ऑलराइटी, बढ़ते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज आवर लास्ट अनाउंसमेंट. ये है जी वर्क अरेंजमेंट्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. तूफान, बारिश या एक्सट्रीम कंडीशंस के टाइम में पहले से काम की प्लानिंग कर लो. एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से बात करके अरेंजमेंट्स कर लें. ऑफिस कब आना है, कब छुट्टी मिलेगी, कब काम शुरू होगा और घर से काम करने का ऑप्शन भी. गवर्नमेंट जब एक्सट्रीम कंडीशंस अनाउंस करे तो सिर्फ वो लोग जो कंपनी ने स्पेशली बोला हो सेफ तरीके से ऑफिस आए. बाकी सब जहां हो वहीं रुक जाओ या सेफ जगह पर रहो. तुरंत बाहर मत निकलना, गवर्नमेंट के अगले अनाउंसमेंट का इंतज़ार करो. ज़्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ इन टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस देखें. ओके, दैट्स इट फॉर ऑल द अनाउंसमेंट्स. अब बढ़ते हैं जी हमारे गानों की तरफ. मैं आपको प्लेलिस्ट बता देता हूँ. सांबेगा बाय साइफी फरीद, सा बाय गगना सिद्धू, वांगा बाय वतन साही एंड रबाब, पहला ही बाय सरबजोत रमता, अखियां सरब एंड हरभजन मान, रिश्ता बाय आर नैक, छः फुट बाय दावी, तेरा ओणा बाय निर्वैर पन्नू, फुल्ला जेहा बाय सैवी कैलोन, दिल दरिया बाय कांबी राजपुरिया, गल दिल दी बाय सी स्कोर, हम सफ़र बाय चंद्रा ब्रार, जिंदगी कुछ तो, आई थिंक ये हिंदी फिल्म का गाना है. उस तो बाद आगे जी AK-47 वरिंदर बरार एंड देन हील बाय काका. ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस प्लेलिस्ट. तो मिलते हैं जी अगले फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस. तब तक के लिए जी चिल करो, टेंशन ना लो, ते जल्दी कलाच रहो. रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय.